0: हमको तो सही
1: ठीक है मैम, आप देखिए गर्मी तो बहुत पड़ रहा है।
0: हम तो अच्छे हैं।

0: करने दाम
1: जी नमस्कार
0: संतोष कुमार बाजार पौधे जरूर उठा के लिया
1: संतोष कुमार जी
0: हाँ हम अच्छे हैं मेरा परिवार अच्छे है ऐसा गर्मी काफी है
1: ठीक है आपने सारे श्रोता गर्मी के परेशान हैं लेकिन फिर भी हो रही है और
0: इधर हल्की बारिश हुई है
1: मौसम थोड़ा बदला है
0: जी

0: चला रहे हैं अभी।
1: सफल रहे और आपको आपका रेडियो सेक्टर जाए।
0: अभी फिलहाल मोबाइल में मैंने मैं सुन ही रहे हैं प्रोग्राम में सुनने में तो आना बहुत खुशी लगता है। एक्चुअली हम फोन किए हैं हम एक और ये हम बोलना चाहते हैं जहाँ हम काम करते हैं यहाँ पे जो मेरा लेबर है उधर का भी नाम लेना चाहते हैं।
1: जरूर
0: एक तो लक्की प्रमाणिक है

0: से तो खराब कर दो रहा हूँ।
1: अच्छा नाम भाई है, आप हमारे साथ पहले आपका स्वागत करते हैं।
0: हम ठीक है, आप कैसे हैं?
1: और बच्चे महाराष्ट्र में रहे हैं,
0: गर्मी बहुत तेज है, सभी तरफ 25-28 डिग्री तापमान रहता है हमारे यहाँ, बरसात का कोई नामो निशान नहीं है।

0: के क्या हो गया है, शहरी क्रम हो गया है, लोगों ने मकान बनाया और एक पेड़ काटने के बाद दूसरा उधर लगाना चाहिए ना।
1: सही बात है, आया है और
0: बदल ही गया है जो अभी
1: नीचे चला जाता है, लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाता।
0: हमारे इधर कई गांव है जो उधर पानी नहीं है, धान कटा वो महाराष्ट्र में उधर पानी की बहुत दिक्कत है। एक सुनने को मिलता ही नहीं, हर दिन में वो सरकार टैंकर लाके वो टैंकर के बांट देती
1: है।
0: हमारे इधर नहीं, हमारे इधर हमारे गांव में दो नदी है, हमको कोई दिक्कत नहीं है।

नंबर होगा 2960445 और हमारा कोड है 0655।

आप फेसबुक पेज पर भी हमारे पास सकते हैं। आपको लॉगिन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते से जुड़कर अपनी बातें अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम पर भेज सकते हैं। तो एक बात आपको बता देती हूँ, बुरी तरह जितनी भी हो हवाओं की पालकी पर सवार परदेशियों के सलाम आए जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जीवन में छुपी प्यार की दास्तान कोई सुनता है कोई कहता है। अगर मामला लिफाफे का हो तो पति की जरूरत होती है, गवाह होती है। बेकार के तार से बंधे आते ही कभी गम उठाने के लिए जीने का हौसला देते हैं, कभी ख्याल बनकर उभरते हैं। देश विदेश में अपनों से जो वीडियो कॉल पर होती बातचीत भी इन्हीं तरंगों पर सवार होकर हम तक पहुँचती है, फिर चाहे देहरादून हो या रंगून। सुरों का ऐसा सार जैसे चंचलनाए बात करें और छुप जाए तो लहजों पर सुनाने देते नगमें जैसे ममता नगर नोट लेती है।

कुछ खास लेंगे जो आपको पहचानने हैं और साथ ही बताना है कि भगवान की पालकी पर सवार जुड़े हैं आपके घर आंगन तक पहुँचते हैं तो आपको कैसा लगता है इन तरंगों पर सवार अपनों की प्रति किसी अजनबी से जो नजर नहीं आते उनकी बातें होती हैं क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसा हो पाएगा है ना इसे अजीब सी बात तो ये बात आपको बतानी है बातें और जो आपकी लिखी हुई बातें हैं आपकी खतरे की बातें हैं और जगत भारती की सुनहरियों पर जो गाते गीत जो आपके रेडियो सेट पर बहुत

aquí, con la semana de la vida, con la semana de la vida.

Right.

सबके लिए एक महत्वपूर्ण चरण है।

और जब नजदीक क्या है, तो उन नजदीकियों को हम बनाए रहें।

भी राजधानी हो रही है या कुछ उसे दूर होता है पर दिन को कल होता है और प्रदेश में होकर की जो दिन को दो रखता है वो पूर्ण होता है। हम फोन पर बातें करते हैं, दिल की बातें करने से मंजिल का हो जाता है, हाल चाल भी पता चलता है। लेकिन एक बात यहाँ ये है, बताओ कि

indicar

दिखाया गया है। अगर आपको ये फिल्म ज्यादा आ रही है तो आप लिख सकते हैं एक और छोटा रिश्ते में क्या समय बदल गया है। देश विदेश में बसे अपने लोग भी एक और की तरंगों पर सवार होकर पल भर में हमारे सामने आ जाते हैं। मुस्कान आवाजें और भावनाएं सीम पर पार होकर भी उनको छू जाते हैं। तकनीक ने दूरियों को छोटा कर दिया है। प्रदेश के विधायक ही पुराने बन गए हैं। सबसे ये थे कि प्रेम अपनापन और जादू की कतार या सीमा को पार नहीं होती, वो बस महसूस किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो पर बच्चे किसी पुराने गीत के मधुर खुश

बहुत खूबसूरती से

है कि चाहे बोर्ड हो या पास हो, विविध भारतीय निवेशित मैं स्पीड हो, जहाँ हटोल हवाओं पर देखा जाता है सुनीला ग्राम हम अनुपान श्रोताओं के नाम, फिर वो बच्चा की रात हो या दिन को हल्की

पहचाना और जो जीत था कभी तो मेरे जीत ही तो मेरे जीत जो रिकॉर्ड पर शुरू होता है और आज जो करेंसी वो ये थी कि हमने रेडियो माइक और टेलीविजन

यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे विश्व दूर संचार दिवस प्रत्येक वर्ष के 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन मानव सभ्यता के संचार के महत्व, उसकी प्रगति और उसके भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए समर्पित है। आज का युग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, यानी सूचना और प्रौद्योगिकी का युग, जहाँ दूर संचार ने दुनिया को एक छोटे से गांव में परिवर्तित कर दिया है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को दूर संचार के महत्व के प्रति जागरूक करना है, डिजिटल विभाजन को कम करने के प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करना है।

से भी व्यक्तियों का या स्थानों के बीच सूचना का आदान प्रदान करना, पहुंचाने के लिए दूध कबूतर या डाक का सहारा लिया जाता था जिसमें काफी समय लगता था, परंतु आज के मोबाइल फोन, इंटरनेट, उपग्रह और अन्य आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कुछ ही सेकंड में संदेश दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बड़ी आसानी से भेजा जा सकता है। यह परिवर्तन न केवल तकनीकी विकास का प्रतीक है बल्कि मानव जीवन को सरल और गतिशील बनाने का आधार भी है। विश्व दूरसंचार दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा की गई थी और 17 मई 1865 को इस संगठन की स्थापना हुई। दूरसंचार का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन कक्षाएं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल पुस्तकालय ज्ञान को कितना सुलभ बना देते हैं। चिकित्सा के लिए टेली मेडिसिन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों से सलाह ली जा सकती है। व्यापार उद्योगों के लिए ई कॉमर्स और डिजिटल लेन देन से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। सामाजिक जीवन में भी सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के माध्यम से

सामने आई है, जैसे साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता की समस्या, डिजिटल असमानता, ऐसी कई सारी गंभीरता से विचार करने वाली बातें भी समक्ष आती हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तकनीकी सुविधाओं का अंतर एक बड़ी चुनौती हमारे समक्ष है, इसे भी दूर करना है। तो इन्हें दूर करने के लिए बहुत सरल सी बात है कि हम अपने आप को साइबर अपराधों से बचा कर रखें। यानी हमारे पास अगर कोई OTP नंबर पूछता है तो वह हम उसे ना दे, या फिर हमारी कोई अपनी गोपनीय बातें या गोपनीय जानकारी सभी के समक्ष प्रस्तुत ना करें। इसके साथ ही और भी छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं जिनके तहत हम हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस हमें अवसर प्रदान करता है कि हम इस क्षेत्र में उपलब्धियों का मूल्यांकन करने, भविष्य की दिशा तय करने और अपने जीवन को डिजिटलाइज करके तकनीकी रूप से निर्माण कर सके। दूरसंचार आधुनिक जीवन की धड़कन बन चुका है और यह सूचना का ही नहीं रह गया माध्यम केवल, यह बन चुका है माध्यम प्रगति का, विकास का और वैश्विक एकता का। इसके महत्व को समझते हुए विवेकपूर्ण और सकारात्मक तरीके से हमें इसका उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और अधिक जुड़ी हुई दुनिया में जीवन व्यतीत कर सके, ऐसा समाज देना है। आज के दिन का यही उद्देश्य है।

चार कदम संभल कर चलिए और चार कदम आत्मविश्वास के साथ और जी लीजिए अपने जीवन को पूरी पूर्णता के साथ में। आज की त्रिवेणी से आज्ञा दीजिए। विधि जैन को नमस्कार।

आकाशवाणी समाचार गौतम बॉक्स से।

वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है, साथ ही दिन भर पर्याप्त

Bonjour, bonjour.

ಸಹಕರಿಸಿ

Okay. Muy bien.

किसी देश के लिए फरमाइश की। विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश जवान का ये शैली

महाराष्ट्र से विनय कुमार आर्या स्वभावी विभाग लगे पारस पायल श्वेता आर्या और ऊर्मी देवी आर्या ने शपथ ली और ककाला उत्तर प्रदेश

सुल्ताना ने मुझे सुल्तान के लिए लिखा हुआ हौसला सुनी कुदरत थी। सभी को पसंद किया था सभी गर्व कर दी रोड से शैलेश सिंह नीलेश सिंह चंद्र सिंह और शैली ठाकुर ने और इसी के प्रमाश की भी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने और इन्हीं सब कुछ लिखा है सबा लेकिन अपना

this method.

बात है, संताप कहाया सकता है। हम लोग आपके दर्शनों के लिए

ना,

0: सोच लिया गया। पहले मैंने स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे, मतलब दीवार के बाद का फर्क था। आप बताया ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी वो बंदी आइडिया वाइडिया उससे हो गया, वन लाइन बना ली हमने दे रहे थे कुछ। और मैं अमित जी से बात किया तो बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह चाहे हमने काम नहीं किया। तीन चार फिल्मों में अच्छे था ना,
1: जी जी
0: सारी फिल्म अच्छे शुरू में बीता होते था और सब हर शूटिंग में स्टोरी स्ट्रिंग में जोड़ते थे। शूटिंग में मुझे देखते हुए काम करता हूँ कोई ऐसा नहीं। फिर जय जी के साथ मैंने जो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी
0: वो भी अमेरिका टूर किए, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई समझ ये है कि जय जी के साथ मैं पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूँ तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो गई, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर। तो दो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते कि मैं सोचा कि असिस्टेंट दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दो अड्डे के लिए जाएंगे वो भी होगा बाकी लोगों को नहीं काम बोला। पहले भी मैंने ऐसा किया था मेरे घर प्रकाश नारायण के टाइम पे प्रकाश नारायण जी का तो कैसे जिसमें उनको थोड़ा सा भेटो और गड़बड़ हुई थी तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के पास बना
1: लो
0: फिर तुम मैं कहूँगा आपकी पिक्चर कभी ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे घर में इलेक्शन वेलेक्शन भी लड़ रहे थे वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी
0: जी। अलबत् मैं आया मैंने एक दिन कहा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे ढूंढते रहते हैं आप लोग और चलता है तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया छोड़ा और उसने कहा कि कैसा है तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है नीति सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है उसमें राशि का रोल नहीं था
1: उसी उसी
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई मेरी स्टोरी में देता हूँ लेकिन इतनी चेंजेज नहीं होगी नया पहलू का मतलब ट्रेंड है
1: जी जी जी
0: उन्हीं का नाम है राइटर है राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम है तो उन्होंने काम मैं तुम्हारे साथ जो भी है तो मैंने उसके लिए पूछा था मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है सागर सर्विस आपसे कहें करने के लिए मेरा बहुत अच्छा अगर सागर सर्विस करने से मैंने सागर साहब से कहा कि ज़्यादा ऐसा कोई स्टाफ मिलेगा ये सोफा की पिक्चर और हाँ इसमें अगर फिल्मी स्टोरी आइडिया है तो उन्होंने सुनों ने कहा ये आठ फिल्म का आइडिया है अच्छा हाँ जब ओरिजिनल तो बाकी कहानी आप राशि निकाल दो बाकी जो है बहुत कम आया उसमें तो बड़ी कमर्शियल भी है चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर बड़ी पिक्चर तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं कुछ और डालते हैं तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे तीन चार साल वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले और इलिजिबिलिटी में किसी का फोटो आया था एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग का फेस बहुत आता था उनका फेस आया उन्होंने वो मुझे दिखाया ऐसी कोई और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का
1: हाँ
0: ये करे तो ये करते करते करते फिर उसने लॉजिक किया कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है 20 साल की लड़की उनका ही करना है तो हमको एक

0: otro respira.
1: Sí.
0: Respira. लेकिन जैसे वो भी प्रोग्रेसिव वाले आदमी थे
1: जी,
0: कागज का भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, तो सोचेगा जो धर्म था हम लोग एक्साइटेड हो गए। तो हमने आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और लूसन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी।
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज ये बच्चा करे और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर का रोल में राज कपूर को ले लें। तो दाल तो दिया हमने, लेकिन मुझे आहिस्ता से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है राज कपूर, काम करने का उस व्यक्ति ने उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। मैं तो मैं डिस्कस नहीं करता।
1: सही कहा जी,
0: और मैं चिंटू से बात कर चुका था, मेरे डॉक्टर को ऐसा वो कह रहे हैं बुलाया जा रही है तो है देख ले तू, तो वो पोस्टर बिगनिंग का मैंने कर दिया उसमें सोच रहे थे। और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सचिन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता से दास होने की वाइफ से
1: जी
0: रूसन के बदले। अब सब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला के रोल ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मैंने राखी ने जाके पूछा शूटिंग के दौरान मेहंदी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में, मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा शर्मिला के रोल जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया
0: हाँ
1: फिर सुनाया,
0: फिर मैंने कहा कुछ बताओ सुना, मुझे लगेगा तो मुझे करना चाहिए तो मैं करूँगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना, इतना कोऑपरेट करती थी, कभी देर थी नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग-जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा को छोटा है अपना को नहीं, अच्छा नहीं, कभी कोई बात नहीं थी
1: जी जी जी।
0: इस तरह से काम करती है, बहुत डिवोटेड काम किया। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा मैं कहूँ
1: वाह,
0: मैंने यह भी कहा हिंदी कैसे सोच लो बेटा, वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी ने कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप कर लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी है।
1: हाँ हाँ,
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह,
0: तो असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई।
1: हाँ,
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था,
1: पहली फिल्म थी आपकी,
0: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस फिल्म से, वो तो उस वक्त तक आज भी और उस वक्त भी बिल्कुल नहीं करना, बोले जाओ भाई दूसरे को भाई हम नहीं करेंगे
1: जी,
0: लोग तो सुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब था इस फिल्म के हो गया पिक्चर जो होना था 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज कर रही थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते।
1: हाँ हाँ,
0: तो उन्होंने यही से कहा कि यार मेरे को फिल्म मिलती है और मेरे मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाऊँ कि तुम्हें कुछ बुरा ना लगे,
1: हम
0: पिक्चर उतारने लगे और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात

0: थोड़ा सा उनका दूसरा आदमी से करने के बाद इसकी म्यूजिक के बारे में बताइए कुछ। राजेश रोशन जी सुना आपने, मजनू जी सुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे।
0: हाँ
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मैं जस जी के साथ था, तो जब हम जाप के टाइम पर मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं मिनिस्टर बनूंगा, और मैं कहता मैं क्या को लूंगा, अरे वाह हम दोनों साथ में काम करेंगे। ऐसा जब से पैदा होती है जो असिस्टेंट होती है, फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो

0: खयाम साहब आ गए जी विचार कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब देख पाए जी उनके साथ वो कर रहे होते हैं, तो बड़ा ज़रा मुश्किल होता है जिन्हें बट आने में उनका बेटा देख रहे थे जैसा तो मुझसे मिले जा बोलो भाई ऐसा ऐसा है आइए करेगा पीछे बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये सी की बातें माननी पड़ेगी थोड़ी सी और ये भी यहाँ जाकर शूटिंग करनी पड़ेगी ये नारा बात बोले पाले इनसे थोड़ा कहूँगा और पिक्चर ले ली और फिर बहुत मेहनत की बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ गवर्नर सिंह कुछ बना बहुत अच्छे गाने चले बहुत ये फिर मैं गया था उस समय आनंद बख्शी जी के पास अच्छा रमे थे तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छे गाने थे लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूँगा ओ क्योंकि जस जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने जस जी ने ओके ओके कर दिया था वो कुछ हुआ था ऐसा हाँ मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन और जैसा जी ने रिकमेंड किया किसी के चैनल पर कि जावेद साहब गाने लिखेंगे उनकी कोई दिल्ली की सहेली है बताने की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है इसका निबंध तो उन्होंने कर दिया अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोली तो फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास गए थे मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म नहीं तो बनाई मजरू साहब ने उनका इसलिए दो नाम दिए थे भले ही के लिए आनंद बख्शी और मजरू साहब बिल्कुल उन्होंने पहले दोनों पिक्चरों के साथ काम किया दोनों के साथ किया था तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दिए पिक्चर
1: बड़े अच्छे गाने बने आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद

0: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
1: जी,
0: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर कहना शुरू कर दिया हमारे ये करो। तो जो जी ने भी कहा ऐसे दो चार बड़े प्रोग्राम ने कर दिया क्या मेरे साथ करो कुछ ऐसे बड़े प्रोग्राम। तो हुआ ये कि रमेश भाई के साथ मेरा उसका आना जाना था, उसका बांधा में ऑफिस था, मैं पानी उनसे उसके यहाँ बाद चला जाता था और पानी में रहता था तो मैं आते जाते जैसे कि वहाँ जाना या पानी तो वहाँ पे उसके पास रहता बैठ के क्या रहते थे डॉक्टर मार भला आदमी बहुत अच्छा आदमी उसे सर शॉर्ट वो भी शॉर्ट ही बोलता था शॉर्टी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलते थे शॉर्टी सर मेरे लिए पिक्चर रोज मूवी से लेके रही पिक्चर हाँ मेरी ये कंप्लीट हो तो शुरू कर दे पिक्चर मेरे का तेरा सारा तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अभी वो करे तू भी करे एक पिक्चर दो बनाऊंगा मैं तुम दोनों की बनाऊंगा सब मेरी अपनी नहीं होगी ठीक है आइडिया वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेज दे मैं ओके नहीं करता था ऐसा चलता रहा बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है कि हमें चलना को ऐसा होता फिर एक आदमी ने जो उनके राजकोटला जी के राइटर थे उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली उन्होंने कहा भाई मैंने ड्रामा देखा है मराठी मराठी वो हमेशा ऐसे करते थे राजकोटला जी वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
1: जी
0: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग जंक्शन से ना हम यहाँ से फटाफट करते थे
1: जी
0: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक सीन करके बैठते थे इंजॉय करते थे लाइफ को वो छः महीने का पैटर्न और मुझे फर्क बस एक महीने के बाद टिकट शुरू होनी थी ये था रमेश लाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ एक महीने बाद आऊँगा तेरे टिकट शुरू होनी थी शुरू से सही सिटिंग कर रहे थे और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर ये है तो मैंने गुलजार साहब का सोचा
1: वाह वाह
0: उनके पास जाऊँ तो कैसा रहेगा
1: पुरानी दोस्ती है
0: वो पापा बुलाता हूँ दादी गुलजार पापा
1: जी
0: सागर को सागर पापा बुलाता गुलजार पापा मिलने आऊँ आ जा बेटा एक आइडिया सुनिए तो आप इससे

0: में थे, लाइफ को वो 6 महीने का पार्टनर, और मुझे खर्च बस 1 महीने के बाद टिकट शुरू होनी थी। ये था रमेश लाल ने कहा, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, 1 महीने बाद आऊँगा, तेरे टिकट शुरू होनी थी। शुरू से सही शूटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा, भाई मैं आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा, सागर साहब उधर दीजिए, ये है। तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,
1: वाह वाह,
0: उनके पास जाऊँ तो कैसा रहेगा।
1: पुरानी दोस्ती है,
0: वो पापा बुलाता हूँ अभी, गुलजार पापा
1: जी,
0: सागर को सागर पापा बुलाता, गुलजार पापा मिलने आऊँ। आजा बेटा, एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने अलग किस्म के गाने हो जाएंगे, आपका का वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश भाई को गुजर है, और गाने भी लिख दीजिए आप।
1: बाबा,
0: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है, उनका बेटा मैं अजीत हो जाएगा, डाला जाए मोहन करना, तो बस स्क्रीन पर नहीं, स्क्रीन पर डाला जाए सॉन्ग ऐसा। तो मैंने कहा, मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का बैठने का दिमाग सुना सकता हूँ, कि नहीं आपको लगे कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ, उन्होंने सुनो। तो मैंने अपना आइडिया सुना दी, उनका नहीं तो मेरा मद्रास की तरफ जाना था, मद्रास की फिल्मों की तरह जाना, इतनी फिल्में देखी। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़े, मैं करता हूँ, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके दो चार में अच्छे सीन डाल के बहुत अच्छे वाले जो सीन जिसे डाले होंगे वो गाने लिखे, और हो गया। अब जब फिर बन गई तो अब दो लड़कियाँ हैं,
1: हाँ ये कौन है।
0: अब मैं गया राठी जी के पास, राठी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको दो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे, अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है, छोटी बहन आप है निशावली रोल, और नूतन है बड़ी बहन, ओके नूतन के साथ मैं कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था, उनका उनकी फिल्में देखने के मेरे बहुत सब्जेक्ट होते थे। तो उन्होंने कहा, सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा, रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूँगी, छोटी बहन के लिए तो मेरे खा बोलो,
1: उन्होंने बोला।
0: हाँ बोला, मैंने कहा मेरा ऐसा कर रखो निर्णय लेना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मोदी किसम किया मेरे को डर लगा, बोले मैं अभी फोन करके मेरे फोन लगाया, लिखा ने कहा मैं पुराने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ, तो रमेश को मेरे पास भेजिए। तो मुझे एक आध बात पहले उत्तर मिली है, एक आध विजय चोपड़ा का स्टेशन की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, तो एल्बम वैल्बम मुझे थे पुराने किसी के देख रहे थे, और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रहे थे, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे पर फोन पर, तो मैं गया मैंने कहा ऐसा सुनो लड़की खाना खाओगे, मैं कहीं खा गया हूँ, अच्छा दो मिनट में खाना फटाफट खाना खा आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुना, मैं फिर से इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी, मैंने सारी पूरी सुन करो, मैंने कह दिया मैं पिक्चर करूंगी,
1: जान हो गया,
0: और इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया। प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया, लेखक के लिए मिल रही थी, राशि के लिए मिल रही थी, है अब सब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन कौन करेगा। शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी है, लोग डबल रोल रखा करते थे, हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है ओरिजिनल, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर की जाती है। तो मैंने ऋषि जी में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है, और ऋषि लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह वाह,
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया, सर एक प्रॉब्लम है बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का, सिस्टर तो उनके बहुत सारी पिक्चर उनके सामने वो लोग मेरे चैलेंज देख चुके थे, बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैं कभी गेस्ट रोल नहीं, मैंने कहा आप मेरी सब्जेक्ट हो लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपका अपने डिसीजन दीजिए मैं क्या करूँ, अच्छा तो घर आ जाओ आठ प्लस रोड पर नाश्ता साथ में करेंगे, मेरे साथ आठ प्लस रोड पहुँच गया, सुबह उनके फ्लैट से उनके साथ नाश्ता किया, बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे राज जाना है, बहुत दूर है,

करना पड़ेगा। तो मैं अभी से भी पहले ये कर रहा हूँ, राज्य की चल रही है वो चल रहा है सब, तो अभी मैं नहीं दे पाऊंगा डेट, जनवरी में कहूँ, दिसंबर जनवरी, क्योंकि कुछ ऐसे मई जून था ऐसा कुछ था। मैं रमेश भाई को बताया, कहता है कि तो ठीक है सॉरी, वैसे भी तू एक सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एड्रेस तू दे जा, तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ रेखा के साथ बाहर वाले सड़कों की शुरू कर दो, और फिर काम ये हो गया। ऐसे मतलब

FM 100.8 MHz per ye aap sun rahe hain.

कुछ है डरो और दीवारे मन के आंगन में किसी के आने

के संग सभी का स्वागत है। तुम्हारा साथ जर जरा सा मिल जाता तो तमाम शामें हसीन हो जाती। न कटती रातें तन्हाइयों में चांद को यूं निहारते हुए बातों ही बातों में गुजर जाता वक्त

शो किया है नादानियां हैं कुछ किस्से हैं कुछ शिकायतें भी हैं मगर जरा मेरे दिल की मजबूरियां देखिए ये मोहब्बत भी उन्हीं से बार बार करता है।

में संस्कृति पर जाया था और बोल के चरण दिए। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का नाम है एक कली मिसकाई।

acontece em vida do Senhor.

स्वयं की शुरुआत किया था और इसको हम लोगों ने इस वर्ष री इंट्रोड्यूस किया। ओएसएम विश्व में ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं जिनके द्वारा ये

और देश के सारे राज्यों में योजना बहुत अच्छे प्रकार से प्रत्येक घरों के दरवाजे तक पहुंची है, क्योंकि झारखंड में तो इंद्रायण फीसदी साबित हुई। आज भी सरकार के खजाने में 7,000 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं, उस पैसे को खर्च करने के लिए मांग नहीं है।

उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार क्षेत्र के

सफर की चुनौतियों को पार कर अपनी कुशलता को सिद्ध कर दयाराम सेना में शामिल हो गए। उन्हें पहली राजपूत इन्फेंट्री सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की चौथी गार्ड में बतौर सैनिक भर्ती कर लिया गया। हालांकि ये खिदमत बतौर अंग्रेजी हुकूमत के मुलाजिम के तौर पर थी, लेकिन ये तजुर्बा यकीनन देश के काम आया। द्वितीय विश्व युद्ध में सेना के तमाम अनुभवी सैनिकों में दयाराम भी अग्रणी थे। सन 1947 में तमाम कोशिशों और शहादतों के बाद देश आजाद हुआ। चेहरे पे मुस्कान आई, लेकिन विभाजित भारत की सरहदें फिर भी बेचैन ही रही। इस अग्निमोचान मुल्क के अलग हुए राष्ट्र की प्यास बुझने का नाम ले लेती। उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी सरहदों में खतरे की सुगबुगाहट को भांपा गया और जैसे आजादी के दरमियान ही भारतीय सेना को उत्तर पश्चिमी सरहदों की तरफ रवाना होने के आदेश जारी कर दिए गए।

नायक दयाराम को भारत की उत्तरी पश्चिमी सरहद से सटे गांव सेनधर कूच करना था। ये इलाका पूरी तरह से संवेदनशील था। यहां दुश्मन सेना के सैनिक सरहद में दाखिल होने के खिलाफ में घात लगाए बैठे थे। राजौरी, झांगर, उड़ी, कठुआ, बांदीपुरा, जम्मू और कश्मीर के रास्ते भारतीय सेना की अन्य टुकड़ियों को भी रवाना कर दिया गया था, जिससे शत्रुओं पर चौतरफा निगरानी रखी जा सके और सेना को पावर ऑफ फायरिंग भी दी जा सके। 6 फरवरी सन 1948 की वो सुबह जब हार कपा देने वाली ठंड और चारों ओर बिखरी बर्फ में रास्ता बनाना, चलना और मिशन को अंजाम देना खासा चुनौतीपूर्ण था।

का भी जज्बा था। खबर पक्की थी कि दुश्मनी सैनिकों ने सुबह 6:40 के लगभग तीन भर की चौकियों पर हमला बोल दिया है, जिसमें चौकी पर तैनात सैनिक, उनकी पोस्ट, असलाहों के जखीरे सभी एक खतरे की

Cuba.

0: श्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्ञान वॉरियर के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं
0: उनसे
1: आप परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उनकी चर्चा कीजिए और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए। देखिए ये पीएम ये

किया जा सकता था। भारी शरीर के बीच अपनी जान की परवाह

चीज युद्ध करते हुए दुष्कर्म सैनिकों को पीछे धकेल दिया। लेकिन इससे पहले कि दयाराम और उनके साथी संभल पाते, दुश्मनों का एक और जत्था आगे बढ़ा और एक बार फिर बारूद के उठते सोलों में सब कुछ धुआं धुआं सा नजर आने लगा। ये मुठभेड़ घंटों चलती रही,

सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। न सिर्फ एक या दो बार बल्कि लगातार पांच बार इस मुठभेड़ के दौरान दुश्मन सैनिकों ने हवलदार दयाराम पर हमले किए और इन हमलों को वो लगातार विफल भी करते रहे। काफी सैनिक इस मोर्चे पर घायल हुए। वही मोर्चे पर दयाराम डटे रहे और गोले फेंक कर दुश्मनों के दांत खत्म करते रहे।

मशीन गन जिसे एलएमजी या ब्रेन गन भी कहते हैं, इसे चलाने वाला सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ। ये देखकर दुश्मनों के हौसले बढ़े और उन्हें लगा कि मंजिल अब तो करीब है। लेकिन इसी बीच घायल अवस्था में भी पूरी फुर्ती से हवलदार दयाराम ने एलएमजी को संभालते हुए दुश्मनों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। उनके चंद बचे सैनिकों ने जब उन्हें इस तरह दुश्मनों पर टूटते देखा तो वो भी पूरी ताकत से हमलावर होते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े और दुश्मनों के सिर में खलबली मचा दी। अफरा तफरी के इस माहौल में अब तक 24 दुश्मन सैनिकों को हवलदार दयाराम ने वही मार गिराया और बाकी बचे फौज छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन कोई 300 सैनिक अब भी दबे पांव आगे बढ़े। लहू से लथपथ दयाराम ने इनमें से दो को तो मौत की नींद सुला दिया, लेकिन तीसरा अब भी आगे बढ़ता रहा। इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, दयाराम ने बड़ी फुर्ती से एक हद गोला उसकी तरफ फेंका और उसके भी पर्खत से उड़ गए। साथियों, हवलदार दयाराम ने न सिर्फ सिंहगढ़ की इस बेहद महत्वपूर्ण चौकी को बचाया बल्कि तमाम असलाहे और ब्रेन गन को भी शत्रु के हाथों में जाने से बचाया। साथ ही चौकी पर चार और घायल पड़े भारतीय सैनिकों की जान को भी बचाया और सिंहगढ़ की इस मुहिम में फतह हासिल की। भारतीय सेना की

चलता और बुद्धिशाली और पराक्रम के लिए हवलदार दयाराम को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

Sunday

Dios va a reír.

God manifests his body.

0: saya berada di sini.
1: Amilah, hello, Didi.
2: Nasib, apa yang kita jadikan? Mungkin maka sebab tu ini sebab tu dia.
3: Saya tu ia di ini rasa kerana kerana tu dia sekarang tu hal tu.
2: अरे भाई ये सभी क्रोध धरण चला जाती करा क्रोध धरण सलाका का नाम ये लोहे की सलाई आपने भी अपनी सेब में डाल रखी है
3: मास्टर जी

उन्होंने मुझे क्या

चढ़ाते हैं आपके पास नमस्ते जी। अपने किसी परम प्रिय मित्र को देने के लिए ये दोनों ही मैंने अंदर की अलमारी में संभाल कर रखे। मास्टर जी, एक जो

परेशान कभी बोला

संसार सज्जा पूरे हिंदुस्तान भर से आबादी इकट्ठी की गई जहाँ बुलाया गया, तो जैसे लाइन के साथ एक आवाज़ है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको सुना।

किसी पर एक आवाज उभरी। मार्केट में गजल का एक एल्बम आया आहट, जो वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासिक से मार्केट की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उधार के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है

फिर क्या चाहिए? पंकज उदास की घटनाओं का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरंगम, 1983 में मिसल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्तरां होटलों में

que mata a mi papá, y quiso renunciar, porque esto va a ayudar. Las cosas indican que el choque de gao será rico en el año. Cuando se dará que dos hombres hay, Nirmal Udhar y Manhar Udhar, संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है। इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिक्षत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली मगर पंकज उदास के गाए इस गाने को खूब सारी

उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए। कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक रजियों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ आज, और फिर एक लोकप्रिय भजन गायक के रूप में

को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलसी या ईसी रिकॉर्ड खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट का जमाना आया।

उपलक्ष्य में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज विधायक को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में KL साइकिल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज राज का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर

Ich habe Ich habe